0: 导致复合肥的价格不断攀升，进一步挤压农户生存空间。
1: जैसे कि पेस्टिसाइड के जो कंटेंट्स है वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उसमें ये वार के कारण काफी दिक्कतें आ रही है उसके कारण पेस्टिसाइड के दाम काफी 20-25% तक बढ़ चुके हैं और भी बढ़ने के आसार है डीएपी और यूरिया ये जो किसानों के काफी पसंदीदा खत है इसका वार के कारण इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से किसान काफी परेशान है बाकी जो कॉम्प्लेक्स है उसके रेट काफी ज्यादा है तो किसानों को वो बियर नहीं कर सकते
0: 现代农业生产高度依赖机械化，而国际能源市场的剧烈波动直接拉高了田间地头农机使用的成本，从而导致农业生产成本激增。
2: Middle East में war चल रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं। गैस के दाम बढ़ने की वजह से इधर जो transportation है, transportation के charges भी वो बहुत सारे बढ़ गए। और transportation charge बढ़ने से इधर जो खेती में जो काम करने वाले tractor है और जो लोग हैं उनके भी charges बहुत सारे बढ़ गए。
0: 生产成本的全面拉高，最终只能由市场来买单。近日，印度化肥短缺带来的被动减产，加上高昂的机械运转费用，正在形成一条清晰的通胀传导链条。
3: shortage आती भी है, तो जिम्मेदार को बीजने में दिक्कत आएगी, उसकी फसल कम निकलेगी मंडी में भी कम आएगी, जब मंडी में कम आएगी तो उसका दाम है बढ़ सकता है, जो कीमत में थोड़ा सा उछाल आ सकता है.तो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा वो
4: 您正在收看的是新闻直播间
5: 今天是文化和自然遗产日今年文化和自然遗产日主场城市活动在湖北武汉举行湖北省内武当山、明显陵等世界文化遗产景区推出门票减免或半价等活动。同时，湖北省博延时开放，非遗展演免费逛，让大家在文化和自然遗产日与文化相遇，亲近大自然。
0: 今年文化和自然遗产日期间，湖北省博物馆文物修复展示中心首次对公众开放。文物修复团队展示陶瓷器、青铜器、漆木器、古书画等各类文物保护修复过程，让观众零距离感受文物保护的科技力量与匠心传承。
6: 你像这个古陶瓷，它有这个长沙窑的一个罐，它一个数字化的一个复原；然后青铜里面是曾侯玉编钟，它的一个 3D 打印的一个效果，然后把它进行了一个整体的一个复原修复。文物从这个传统的修复技艺跟现代科技结合以后，让它可以更好的达到一个完好的一个效果。
0: 从武当仙山的明代古建到钟祥明显陵的皇家龟制，从鄂西深山的唐雅土司城遗址，再到神农秘境的原始山林，湖北坐拥四处世界遗产，大家在人文古韵与自然奇秀中体验荆楚文化的独特之美。
7: 在我的身后呢，就是神农潭了。据说当年炎帝神农氏呢，就是在这里遍尝百草，架木为潭，跨鹤飞天。那么神农架的名称呢，也由此而来。人文奇观呢，与自然奇观相结合，让神农架成为了一个独特的秘境文旅 IP。对于中外游客来说，这里也有着神秘的独特的魅力。
0: 湖北省推出了神武峡国际生态文化旅游路线，以神农架、武当山、长江三峡与恩施大峡谷为坐标，串联起九处国家五 A 级旅游景区与七处世界级自然与文化地标，以全长逾400公里的黄金廊道纵贯鄂西，将湖北省内最震撼的自然奇观集群一站式呈现。
5: 当古老文物遇上数字科技赋能，当大家再次品读简牍上的文字，当乡土歌谣走进校园课堂，自然遗产、文化遗产、非物质文化遗产述说着中华文明的生生不息。
0: 浙江杭州拥有西湖文化景观、中国大运河杭州段和良渚古城遗址三大世界文化遗产。这两天，在杭州西湖柳浪闻莺、大运河桥西街区、良渚遗址公园三大遗产地对应的点位，市民游客可以领取任务卡，沿途完成实景体验、科普打卡等趣味任务。杭州启动三大事宜联动计划，首批联动内容聚焦文旅融合，通过公园加遗产的模式，让大家一起守护宝贵的世界遗产。最近，甘肃简牍博物馆文物